0: Your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूनां विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक अते बार-बार अपराध करन वालियां नूं भाईचारे तों दूर रखण लई सिस्टम विच सुधार, तां जो तुसीं घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
4: ईस्ट एफएम, योर रेडियो, योर म्यूजिक, 102.7।